0: दोहा को सारे गीतों का जैसा सारो वादा नंता
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हुम था अबदो एकु गवो मा बाउ तो वे।

mehar gadin hatur gadi 47 minute 50 passe kunt hinga mani lodhi ke megot live fm me gadi ga kure meg nani tibe phunge sa gadi ke baveria tea time request av love message kuramun request kuramun genda mi hama me this show kure daane fas kadi baya hama ya den hama love devra ko hama lavata vis jaha demu wa ka dakalam benu ba baveria baveri na wa ka dakamun kure daane den ge bai please love kan edi fa could you please play the song prem ki ne pyar se मूवी हमसे है मुलाकात मुकाबला दो हमसे है मुकाबला ए फिल्म के सीधा अलावा कमेंट नहीं है डेडिकेटिंग टू ऑल लिसनर्स में अलावा में जहाँ देने ए नंग के अलावा में जहाँ नहीं है सीधा फिल्म के अलावा कमेंट यकीन है नॉमिकल कोंगे

0: ए मारी एक्कल सुजी बदल कोल्ला फिए
1: एहेंता असलुस हाद देरे दो अले कम हाद लोबी ने दे मि उंगुलुनी
2: साब है मारी हां तो एपुनी डॉक्टर बाय बदल करवा हके
3: मलेरिया गित बार लिफा बार डॉक्टर बाय कोड इत वदकु गिन अन्नो दोयले बे बेनो कोले कुन बेनो साइज वस मीरवान एकमकु कोइन निमाने तकोन

0: दिव्य ही एक मुंगे ने स्थिति
1: वायरल वाइब
2: एक गोएको तो मगपुल रिफ़ा लवतका एक चार्ट तोगे एमए टॉप लवतका अधे मिनोनस एक प्लेटफॉर्म तोगे एमए वायरल लवता
1: वायरल वाइब
0: कौन में हफ्ता आएगी बस आदित्य दोहों के मेंदुर फाहो देख जहाँ रो रिपीट होम दोहों के रेगंडो एकार जहाँ रो आदि अंगार दोहों के मेंदमो बाहर जहाँ रो
3: वायरल वाइ
0: हमारे कड़ी मोदी है कि मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम
4: दिवे ही एफएम मोदी है कि मेगाहर्ट्स